0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

0: रहे हैं. अभी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सनी कार्ड फाउंडेशन. सो सनी कार्ड फाउंडेशन बेसिकली एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग मोस्टली हम लोग इवेंट प्रोडक्शंस पे फोकस करते हैं. तो हमारे मोस्टली जितने भी इवेंट प्रोडक्शंस होते हैं दे आर कम्प्लीटली आर्ट फोकस्ड इवेंट्स. और हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी आर्टिस्ट एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने की, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको लाने की, काफी लोकल बिजनेसेस है उनको प्रमोट करने की, एंड पोर्शन ऑफ ऑल द फंड्स फ्रॉम ईच इवेंट्स हमारे सोशल कॉजेस पे भी जाता है. लाइक जितने भी अनप्रिविलेज बच्चे होते जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गया, ऑरफेंस हो गया, हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए, ट्राइबल किड्स हो गए, लाइक वी ट्राई टू सपोर्ट देम ऑल्सो फ्रॉम आवर इवेंट्स. तो हमारे जितने भी इवेंट प्रोडक्शंस होता है तो हर इवेंट्स एक डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के होते हैं. तो हमारे पास्ट में जैसे सोल्स एंड शैडोज हुआ था उसमें हम लोग हॉरर थीम एज वेल एज सोशल क्राइम्स लाए थे के ऊपर म्यूजिकल थिएटर शो, बेसिकली म्यूजिक कॉन्सर्ट लाए थे कम्प्लीटली. उसके पहले हीरा मंडी शो हम लोग का प्रोडक्शन का था. लता मंगेशकर के लाइफ के ऊपर हम लोग प्रोडक्शन इवेंट्स किए थे, क्लासिकल नाइट किए थे. तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर हम लोग इवेंट प्रोडक्शंस करते हैं. तो इस साल हम लोग 27 जून क्योंकि मल्टीकल्चरल डे है कनाडा का, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्लासिकल एंड फोक फ्यूजन म्यूजिक फेस्टिवल लाने की. तो ये हो रहा है आपके 27 जून जेनेसिस इवेंट सेंटर में फीचर जिम.
1: हाँ, नेक्स्ट सैटरडे
0: है. हाँ, नेक्स्ट सैटरडे
1: एक वीक ही बचा है. और इस इवेंट की खासियत क्या है, क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या होगा, काफी सिंगर्स होंगे या परफॉर्मर्स होंगे या?
0: जरूर
1: जी.
0: हाँ, तो बेसिकली खासियत ये है कि हम लोग मल्टीकल्चरल इवेंट्स तो देखते हैं, जैसे कैलगरी में डिफरेंट डिफरेंट मल्टीकल्चरल इवेंट्स है, बट हम लोग स्पेशली फोक जॉनर पे मतलब फोकस कर रहे हैं. बेसिकली जितने भी ट्रेडिशनल और कल्चरल फोक्स है हम लोग मोस्टली जैसे देखते हैं गिड्डा इवेंट्स होता है, गरबा इवेंट्स होता है, बट हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव था जैसे हमारे साउथ एशियन बहुत तरीके का फोक्स है तो वो हमारे हाईलाइटेड नहीं होता. जैसे हमारे शो में लावनी परफॉर्मेंस होने वाला है, तो लावनी एक महाराष्ट्र के काफी ट्रेडिशनल फोक है, वो परफॉर्मेंस होगा. भाटियाली जो बोटमैन के सॉन्ग्स होते हैं तो वो सॉन्ग्स हम लोग लाएंगे. झिझिया जैसे है वो बिहार के काफी एक ट्रेडिशनल फोक है, उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं. साउथ इंडिया के बहुत सारे फोक्स है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं. चाइनीज फोक है, एक काफी सुंदर स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक फोक प्रेजेंट करेंगे. फिलिपिनो फोक ला रहे हैं. तो मतलब गिड्डा, भांगड़ा, गरबा वो सारे भी हमारे रहेगा. लाइक हम लोग कंटेंट्स पे बहुत फोकस करने की कोशिश करते हैं. तो काफी सारे हमारे जो परफॉर्मर्स है वो कैलगरी से भी आ रहे हैं, एडमंटन से आ रहे हैं, सेंट जॉन से आ रहे हैं, बीसी से आ रहे हैं, और काफी सारे आर्टिस्ट और ऑडियंस. सो एंड डेफिनेटली सिटी काउंसिल से भी आ रहे लोग काफी सारे, और मीडिया तो है. हमारे राजेश जी तो है वन ऑफ आवर मीडिया पार्टनर्स एज वेल एंड सपोर्टिंग आवर इवेंट. एंड हम लोगों का बहुत काफी सारे इवेंट्स में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड वी आर सो थैंकफुल टू हिम फॉर दैट.
1: जी जी, थैंक यू वेरी मच अर्जिता जी. तो हम तो हमेशा चाहते हैं भी अच्छे अच्छे इवेंट्स हो, सब लोग मिलजुल के इसको ऑर्गेनाइज करें.
0: हाँ.
1: तो ये अच्छा आपने बताया. और क्या इसको कहते हैं, तो ये इसमें सिंगर्स भी होंगे इस बार? हाँ. परफॉर्मर आपने बता दिया, परफॉर्मेंसेस तो होंगी पर सिंगिंग का भी होगा.
0: राइट, राइट. हाँ, हम लोग का जैसे 2 घंटे का अराउंड म्यूजिक कॉन्सर्ट इसमें प्लान्ड है. ओवरऑल इवेंट हम लोग का अराउंड 5 आवर्स का होगा. तो 2 आवर्स हम लोग का उसमें म्यूजिक कॉन्सर्ट है और बाकी जो 2-3 घंटा जो है उसमें हम लोग काफी सारे डांस परफॉर्मेंसेस है, डांस ड्रामा है, स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट पे मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं, विजुअल आर्ट्स, तो उसको हम लोग फोकस करेंगे. एक हम लोग सेक्शन किए है आर्ट कंपटीशन का, वो ऑलरेडी हो चुका है उसका हम लोग विनिंग मतलब वो आर्ट कंपटीशन हम लोग क्या किए थे, फोक आर्ट्स पे. हमारे इंडिया में जितने भी तरीके के फोक आर्ट्स होते हैं ना, जैसे मधुबनी आर्ट्स हो गया, वर्ली पेंटिंग हो गया, पटचित्र हो गया, फिर मंडला आर्ट्स हो गया, तो आवर ऑब्जेक्टिव वाज कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़े. इसी बहाने कंपटीशन होगा तो उनको एनकरेजमेंट भी मिलेगा, दे विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द फोक्स, है ना. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था. और इवन जो हमारे ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट में, हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी शामिल हो, उनके पेरेंट्स शामिल हो. हमारे बच्चे जो यहाँ पे बड़े होते हैं तो लाइक वो एक डिफरेंट कल्चर में बड़े होते, बट हम लोग चाहते हैं कि वो एक रूट से

0: भी कनेक्टेड रहे तो बस वही कोशिश है हमारे इनिशिएटिव का और इस इवेंट से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीकैप बच्चों के काम के सपोर्ट करते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं प्लस हम लोग फूड ड्राइव्स भी कंडक्ट कर रहे हैं जुलाई अगस्त में अनप्रिविलेज बच्चों को तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लेके हम लोग आ रहे हैं ये शो में
1: मैं थोड़ा पंजाबी च बोल के भी दसना चाहूंगी तुहानू सारयां नू साडे दर्शकां नू ते सुनन वालयां नू अरिजीता दा कहंदा है मतलब है कि इन्ने बच्चे इत्थे हर अलग साउथ एशियन एरियाज चो ने और वो अपने प्रांत दे डांसेस फोक सिख रहे ने इत्थे बहुत सारे डांस स्कूल्स ने जिहड़े सिखा रहे ने बट उहनां नू एक स्टेज भी तो देना है ना जिथे वो परफॉर्म करन और उन्हां दा हौसला वधे कि हाँ जे अज असीं सिख्या सी ते वी गॉट अ स्टेज टू परफॉर्म देयर जे वो बच्चियां नू वो इंस्पिरेशन अरिजीता वर्गे कॉन्सर्ट क्रिएटर्स नहीं देंगे ते बच्चियां नू की मजा आएगा सीखण च तो जो जो सीख रहे ने लावनी सीख रहे ने गिद्दा भंगड़ा सीख रहे ने गरबा सीख रहे ने उन्हां नू एक स्टेज भी दिता जाए और जिदा तुसी अरिजीता कह रहे हो कि हर प्रांत तो अलग अलग डांस है ना बोट बोटमैन सिंगर्स और सब बच्चों का इंटरेस्ट है वो चीज किते असी लूज ना कर दिए एक हैरिटेज है वो असी किते लूज ना कर दिए इस करके जो बच्चों ने कुछ सीखे उन्होंने परफॉर्म करने लिए स्टेज दिता जाए है तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है अरिजीता गुरशरण और अरिजीता इंट्रोड्यूस करेगी सारे सिंगर्स नू जो दे नाल उस दिन परफॉर्म कर रहे हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सर्ट प्लस फोक कल्चरल क्योंकि कैनेडा मल्टीकल्चरल डे है ओनू एक इंडियन रूप दिता गया है फिलीपीन तो भी उन्हों का फोक है ओ बहुत वड्डी गल होएगी कि जे वह भी आके थोड़े टाइम लिए उत्थे टाइम बितान और देखन ते उन्हां नू भी वधिया लगेगा अरिजीता नू कॉन्टैक्ट करके पुछो कि तुहाडे प्रांत दा परफॉर्मेंस कदों है और टिकट्स बस थोड़ियां जिहियां ने ते थोड़ा रश करन पांच दिन होर रह गए ने
0: मैंने जब जो चाइनीज है जो फिलिपिनोज है बाकी जो जो डिफरेंट नॉन इंडियन है जब उनको मैंने ये बताया वो लोग इतने एक्साइटेड थे सारे क्योंकि वो लोग भी मुझे बोले कि हम लोग जल्दी आएंगे और हम लोग को पूरा देखना है इंडियन भी जो फोक्स है डिफरेंट डिफरेंट और जो जो फोक्स हो रहा है क्लासिकल है हमारे भरतनाट्यम कथक और डिफरेंट वो क्लासिकल और एज वेल एज फोक हम लोग ला रहे हैं परफॉर्मेंसेस कार्नेटिक क्लासिकल के म्यूजिक सेक्शन भी है प्लस हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है जो फोक इंस्पायर्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स है बेसिकली हम लोग बस उसी वही सॉन्ग्स ही परफॉर्म करेंगे जो मतलब फोक इंस्पायर्ड बॉलीवुड में बना है सॉन्ग्स तो हम लोग उसी पे फोकस किए हैं इस थीम पे तो बाकी जो नॉन इंडियंस जो है काफी सारे नॉन इंडियंस वो केनिया टैंजानिया से है मतलब डिफरेंट डिफरेंट और जगह से तो उनके जो एक्साइटमेंट था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के एज अ परफॉर्मर एज वेल एज एन ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ नहीं एटलीस्ट कुछ एक इवेंट वो बाकी लोगों को इम्पैक्ट वो क्रिएट करने की कोशिश किया मतलब हो रहा है वो देख के अच्छा लग रहा है बेसिकली
2: नहीं बड़ा अच्छा जी पहले भी अरिजीता जी काफी अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं और जैसे उन्होंने बताया भी हम हमेशा इनके साथ हैं तो इस बार भी इनकी सपोर्ट के लिए और हम सबको इनवाइट करेंगे भी वहाँ पे जरूर जाओ और इस प्रोग्राम को एंजॉय करो आके और प्रोग्राम की टिकट क्या है और जी कितने
0: टिकट जो है टिकट एक्चुअली $20 से स्टार्ट है तो जो रेगुलर टिकट है बेसिकली $25 है बट अगर आप लोग ग्रुप में आओगे इट्स $20 जो रेगुलर टिकट्स है और VIP 35 करके है बट अगर आप लोग ग्रुप में आते हो तो $30 करके है वैसे और खाने का
2: मतलब कितने का ग्रुप
0: अराउंड 10 बट इट्स ओके लाइक आप लोग बताइएगा लाइक यू कैन कॉल मी लाइक जो नंबर है 4034798595 और एक और नंबर है 647 क्या नंबर 6476715180
2: जी तो इस नंबर
0: और आपका नंबर भी दे दो अगर
2: आपका आपका भी
1: मेरा नंबर भी है 4033990033 आप इनकी भी तीन नंबरों में से एक नंबर पे कॉल करके टिकट की जानकारी ले सकते हैं तुसी पूछ सकते हैं शो किन्ने बजे शुरू हुआ की सारा कार्यक्रम है ते टिकट्स किनिया रह गया ने और ग्रुप च लेनिया या सिंगल रहनिया यू आर मोस्ट वेलकम एंड विल बी हैप्पी टू हैव यू देयर
2: बिल्कुल जी बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन जड़ी दी जा रही है ते एक छोटी जी ब्रेक लेके फिर वापस मिलते हैं और फिर दोबारा से आपसे एक बार प्रोग्राम की डिटेल जो है जानते हैं एक ब्रेक तो बाद जी
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है।

0: एक नया घर।
1: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
0: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
1: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
0: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
1: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
0: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM।
3: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA applications, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा ते महारत रखता है। तुहाडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इको छत हेठ इमिग्रेशन अते इंश्योरेंस दीआं सेवावां प्रदान करदे हां। सानू संपर्क करन लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
4: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, 403-225-1111.
2: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

0: Namaste, Chica Lada. You're listening to Calgary's most popular radio. Radio Sabrang. 84.7 FM.
1: Take your business beyond. फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है
2: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है
1: हुन तुसी उना नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो
2: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो
1: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890
1: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल

0: करें 587-360-6890 6873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 84.7 FM
3: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events.
4: जी एक बड़ी important वैसे क्योंकि अपना कैलगरी दे नाल ट्रांजिट दे नाल अपना भाईचारा काफी जुड़िया तुहानू पता सितंबर मई 25 दे विच ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 67 ਸਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਟਿਸ ਬੇਕਰ ਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੋ ਕਈ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਰਜਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਮੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਦਰ ਦੈਨ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਈਵੈਂਟ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਆਪਕੋ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਾਮ ਮਿਲਾ ਐਜ ਏ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿਆ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ
5: ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਵਾਜਿਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ
4: ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
5: ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਜਿਦ ਵਾਜਿਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇ ਸੇ ਮੈਨੇ ਦੋ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਆ ਅਮਜ਼ਦ ਨਦੀਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥੇ ਉਨਕੇ तो वो रिलीज हो चुका है अभी वो फिर मैंने मार्च में अभी दो मूवीज में काम किया तो एक उसमें से साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एक कॉमेडी मूवी है और दोनों का मैं प्लेबैक कर रही हूँ अभी मेरा 18 सॉन्ग का साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक और बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर है जो मैं नाम रिलीज करेंगे ग्रेजुअली एंड अभी उसका भी काफी सारा काम चल रहा है तो उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियन जैसे आशा भोसले जी उषा उत्तू परिजीत सिंह सोनू निगम के काफी लोगों के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे तो अभी मेरे भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं मैं उनके नहीं हूँ बट आई एम वर्किंग विद देम और काफी जल्दी ये साल में काफी सारा रिलीज होगा टारगेट वही है अभी एक और फीचर फिल्म में मैं काम करूंगी जुलाई महीने में तो अभी अपकमिंग ये है
4: जी जी वेरी नाइस बड़ा अच्छा है जी कांग्रेचुलेशन
5: थैंक यू सो मच
4: आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आने वाले टाइम में और भी काम करोगे तो इट्स गुड भी हमारे कैलगरी से भी अच्छे अच्छे जो है वो टैलेंट निकल रहा है जी
6: अरिजिता जी के सॉन्ग का वीडियो शूट भी तो हुआ था
5: हाँ
6: आप वो तो बताना भूल ही गए अरिजिता जी
5: हाँ ऑडियो प्रोडक्शन मुंबई में हुआ था यहाँ पे शूट वीडियो प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था बेसिकली अभी तो हाँ इन लोगों के साथ मैंने पहले एक्चुअली काफी सारे स्टेज शोज वगैरह किया था मैंने दुबई में डिफरेंट इसमें जगह पे अबू धाबी दुबई और डिफरेंट जगह पे और बाकी जो मेरे अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है तो फिर मैं क्योंकि मैं मेरे गुरु थे पंडित अजय चक्रवर्ती पटियाला घराना से मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखी हूँ और मुझे काफी सारा स्टेट लेवल अवार्ड्स वगैरह मिला था और मैंने काफी सारे टीवी शोज वगैरह में काम किया तो वही सब थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्ट बना अदर देन माई फुल टाइम जॉब
4: बिल्कुल जी अर्जिता जी वैसे फुल टाइम इंजीनियरिंग लाइन में है इंजीनियर तो है
5: डेटा साइंस में
4: है बेसिकली इंजीनियरिंग तो चलो एक वर्ड हम यूज करते हैं बट डेटा साइंस की जॉब करती हैं काफी अच्छा प्रोफाइल है इनका क्योंकि काफी सालों से उसी लाइन में है
5: 15 साल हो गया मुझे
4: तो दैट्स वेरी गुड काफी ज्यादा इन्होंने काम किया तो कैलगरी दे सुनने वाले देखने वाले सारे दोस्तों दस दिए कि भी आने वाले दिनों दे विच अरजिता जी जेड़े ने एक 27 जून को प्रोग्राम करने जा रहे हैं जेड़ा कि अगले संडे ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ
5: ਸੈਟਰਡੇ
4: ਸੈਟਰਡੇ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ $20 ਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਓਗੇ 25

0: ਕੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੈਂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਰਜਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਪੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
1: ਹਾਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ 4034798595 ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 6476765180 ਪੇ
2: या 403-399-0033
0: पे जी तो इस तरीके ना जी टाइम बड़े पास आ गया तो थोड़े मिनट हमारे पास बचे हैं क्योंकि कई बार हमारे दूसरा प्रोग्राम जो चलना होता है वो जल्दी जल्दी हम रैप अप करते हैं बट और इस प्रोग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करनी चाहें तो जी
1: कुछ लोग हम लोग को फूड का इंक्वायरी कर रहे थे फूड बहुत ही सारा ऑप्शन आपको मिलेगा चाहे वो आपको मतलब कोई भी स्ट्रीट फूड्स हो मतलब चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ चाट हो लाइव पानी पूरी हो मतलब डिफरेंट जो चाइनीज आइटम है चाहे वो नूडल्स मंचूरियन मतलब पनीर वगैरह जो भी है समोसे लाइक डिफरेंट जितने भी वेज में भी मिलेगा उतना आपको नॉन वेज में भी मिलेगा मोमोज से लेके सब चीज
2: प्लस रीजनेबल प्राइस
1: मतलब $4-5 में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएगा और काफी सारे मॉकटेल शेक्स आइसक्रीम संडेज और जो जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा
2: बच्चों को कल्चरल का बच्चे नु कल्चरल प्रोग्राम तो दिखाओ नाल खवा पिला के खुश भी करके लेके जाओ
0: बिल्कुल जी बच्चे आएंगे तो खान पीन के बढ़िया महसूस करते फिर
1: तो ये एक इन्फॉर्मेशन है और हम लोग का जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हम लोग म्यूजिक में जैसे मैंने अपना प्रोफाइल तो थोड़ा बताया जैसे और फिर मेरे साथ गुरशरण है गुरशरण इज आल्सो विनर ऑफ सूर सरताज रियलिटी शो का और लाइक ही इज अ वेरी वेल नोन सिंगर इन कैलगरी एज वेल अनिता जी है अनिता जी साउथ के प्लेबैक सिंगिंग की है एंड शी इज अ ट्रेन कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर तो वो है फिर हमारे साथ समर्पिता है डॉक्टर समर्पिता शी इज अ डॉक्टरेट एज वेल एज लाइक जयपुर घराना से कथक क्लासिकल ट्रेन्ड डांसर है फिर हमारे साथ जसप्रिया है जसप्रिया जी का परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पे शी इज सो पॉपुलर विद विरासती जन उनका काफी सारे शोज एंड शी इज सो शी हैज वॉन सो मेनी अवार्ड्स एक्चुअली जसप्रिया जी है फिलिपिनो ग्रुप्स में आपको बताया शामिल है फिर चाइनीज एक फोक है जावली बोल के एक ग्रुप है वो एक स्टोरी टेलिंग एक प्रेजेंटेशन करेंगे डिफरेंट थीम के ऊपर बेसिकली वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगा गुरुकुल डांस स्टूडियो से निशा है तो बहुत वो भी पॉपुलर है मतलब कथक में एज वेल एज फोक परफॉर्मेंसेस करेंगे एक भरतनाट्यम के बहुत बड़े टीम आ रहे लाइक मोर देन 50 पीपल लाइक वो एडमंटन से आ रहे और बहुत अच्छे वो लोग ट्रेन क्लासिकल डांसर्स है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस उनका होगा फिर इनके है सेंट जॉन से हमारे ग्रुप आ रहे पूरा कम्प्लीटली तो वो भी परफॉर्मेंसेस करेंगे फिर हमारे बिहार एसोसिएशन से झिझिया परफॉर्मेंसेस होगा फिर ऐसे ऐसे करके काफी सारे कॉन्टेंट्स है
0: काफी इसका मतलब भी काफी कुछ इकट्ठा किया आपने जो उस दिन देखने को मिलेगा
1: बहुत
0: और समा क्योंकि बड़ी तेजी से समाप्त होता जा रहा है ते एक बार फिर तुम दस दी भी ये प्रोग्राम मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम नु 7 बजे तो लैके 8 बजे तक सुनते हो तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ iwebguide.ca ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ SEO ਦੀਆਂ AI ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 4034000203 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਰਜਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ
1: ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
0: ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਹਾਂ ਤੋ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $20 ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
4: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ

0: वासियो की तुसी लंबी लाइन अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन, अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम, फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक, ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4096। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
2: मानसंग सप्तीन